नाम ले जा रो तने ने दिखा ने से प्याये चौसिया मी यायो सूरा तुगरे शिवा थे आलमी तु या प्रमी पिखा तमी हो ना लाली जो मा जावी जैसे मुमा अस्वां को ने बाबी हेलो वे क्यों भी मैं मतिया मुमा